0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुनके रे वेर क्वारो
0: पियों चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला इरोका कालू पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो Pium yikere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yunyo or radio
2: Aaron

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन आरोन
3: द अकबर लेडीज एंड जेंटलमैन

0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो
2: जो उन्होंने कोई चूरा करने नहीं कोई चिपक उन्हें टाइल्स निकली निकली टाइल्स
3: क्यों कोई नहीं आले ये न चेने में बोले बोर क्यों बोरा रात में कुरियों नहीं नामचियल कुछ नहीं पहिए
2: आज ये बोरा ले चूला
3: चूला एक और चूला चूला नहीं कुरियों नहीं नामचियल दाना ये पिए टेक्नोलॉजी

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो